0: काम को मजबूत करने की कोशिशों पर भी बातचीत की है। ये मुलाकात अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जारी होने के आयाम में सर अंजाम पाई है। इस जंग में ईरानी फौजी तवानाई और इकतसादी बुनियादी ढांचों पर हमले हुए हैं और खत्ते में ईरान की जानब से इंतकामी हमले भी किए गए हैं।
1: गजा की पट्टी में दादी टीमों ने तमाश इमारतों के मलबे तले से मजीद 17 लापता शहरी की लाशें बरामद की हैं। गजा के सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट की जांच जारी करते बयान के मुताबिक गजा शहर नसीरात पनाह कजीन कैंप में जारी कार्रवाइयों के दौरान जैतून यरमूक और नसीरात के इलाकों में मलबे तले दबे लापता शहरियों की लाशें निकाली गईं। रेस्क्यू टीम शोधा की लाशों की बाजियाबी के मनसूबे के दूसरे महले के तहत पूरे गजा में सैकड़ों तबाहशुदा इमारतों में तलाश का काम जारी रखे हुए है। इन कोशिशों के जरिए 1000 से लापता अफराद तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जगबंदी मुहदे के बावजूद मलबा हटाने और तलाश के कामों के लिए जरूरी भारी मशीनी आलात को शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से इमदादी काम इंतहाई मुश्किल और सुस्त रवि का शिकार है।
0: इसराइली वजीर दिफा इसराइल काज ने जनूबी लुबनान के अली अलताहिर इलाके के करीब आने वाले किसी भी शख्स को ख़त्म कर देने की धमकी दी है और कहा है कि फौज इस इलाके का कंट्रोल संभालने की तैयारी कर रही है। काज ने इतवार को दावा किया कि इसराइली फोर्सेज ने वहां हिजबुल्लाह के जंगजुओं को हलाक किया और उनके सुरंगी रास्ते तबाह किए। अब हम किसी ग्रोह या किसी और फरीक को दोबारा मजबूत बनने से रोकने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उस इलाके का हिस्सा है जिसे इसराइल पीली लाइन कहता है और लुबनान के अंदर एक खुद साख्ता सिक्योरिटी जोन के तौर पर कबूल करता है। यह मकाम तकरीबन 700 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगी जब तक लुबनान भर में हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह नहीं किया जाता। लुबनानी हुकाम की तरफ से इस हवाले से फौरी तौर पर कोई तबसरा सामने नहीं आया है। वाज़ह रहे कि इसराइल अब भी जनूबी लुबनान के बाद हिस्सों पर काबिज है। जुमेरात को इसराइली फौज ने अली अलताहिर रेज पर एक ताकतवर धमाका किया और दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के सुरंगी नेटवर्क और 2 किलोमीटर से तवील एक दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है। बाद अज़ाब बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस जगह को ईरान के बाहर सबसे बड़ा ईरानी मरकज करार दिया। इस महीने के अवायल में नेतन्याहू ने दावा किया था कि इसराइली फोर्सेज ने इलाके की सफाई मुकम्मल कर ली है।
1: इस टाइम्स ए सकाफत मक्की जोहर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में दस्तावेजी फिल्म नाजा को मकरूह करार देते हुए बैन अवी इस फिल्मी मेले में इसके लिए जूरी स्पेशल अवार्ड के ऐलान को हैरानकुन और दशका पहुंचाने वाला एक फैसला करार दिया। ये दस्तावेजी फिल्म स्टाइल फौज की अहलकारों की इतराफात पर मबनी है, जो फिलिस्तीन की जासूसी दूर बैठकर निशाना बनाने वाले मैकेनिज्म में शामिल रहे हैं। गजा में फिल्म में गजा पर फौज हमलों को नस्ल खुशी के तौर पर पेश किया गया है। जोहर ने इस फिल्म को वतन से गद्दारी के मुतरादिफ करार देते हुए कहा, वो फिल्म के हदायतकारों यूवेल अब्राहम और राचल जोशर की शहरियत मनसूख करने के लिए फिल्म फोर कार्रवाई करेंगे। बाकी जोहर ने अपने पोस्ट में लिखा है, बिल्कुल वही वजह है जिसके तहत मैंने सिनेमा की दुनिया में एक बड़ी इसलाह का आगाज किया है, ताकि इसराइली शहरों को अपनी जेबों से इसराइल फौज के सिपाहियों रियासत इसराइल को नुकसान पहुंचने वाले नुकसान की कीमत न अदा करनी पड़े। उधर सकाफत के हिस्से से रियासत के साथ गद्दारी करने वाले कमीने तख्लीकारों की इसराइल शहरियत फौरी तौर पर मनसूख करने की कार्रवाई करूंगा। ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में तय शुदा दो तरफा मुलाकात के दौरान तकरीबन हर मौजू ज़ेर ग़ौर लाने की तवक्को रखते हैं, जिसमें तिजारत, गाड़ियों की तैयारी, बोइंग तैयारों की फरोख्त, यूक्रेन और गजा के तनाज़ात, मसनू जहानत और अमरीकी दिफाई पैदावार शामिल हैं। अपनी इंतजामिया की चीन से आने वाली गाड़ियों पर 100% से 150% तक आयात करदा टैरिफ का दिफा करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने लोकल मार्केट को कामयाबी से बचाया है, और इसके बरअक्स यूरोप पर तनकीद करते हुए दावा किया कि यूरोप चीनी दरामदात की वजह से शदीद नुकसान उठा रहा है। जब पूछा गया कि क्या वो बोइंग तैयारों की खरीदारी के हवाले से किसी माहदे की तवक्को रखते हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया, मैं हर मतलूबा माहदा हासिल करता हूँ। चीनी इदारों पर ईरान को उर्दन में अमरीकी और इत्तेहादियों के फौजी अड्डों की सैटेलाइट तस्वीर फराहम करने के इल्जाम के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने कहा, वो वही करते हैं जो हम करते हैं। जब वो कहते हैं कि चीन हमारी जासूसी करता है, तो मैं कहता हूँ आप सही कह रहे हो, क्योंकि हम भी उनकी जासूसी करते हैं। रूस यूक्रेन जंग के हवाले से ट्रंप ने कहा कि चूंकि सप्लाई में खलल ईंधन की आलमी कीमतों को बढ़ा देता है, लिहाजा उन्होंने यूक्रेन सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से दरख्वास्त की थी कि वो रूसी डीजल रिफाइनरीज को निशाना ना बनाए। दिफाई पैदावार के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने ऐलान किया कि अमरीका यूक्रेन की मदद के बाद गोला बारूद के जखायर को दोबारा तेजी से बना रहा है, और कहा कि हम वो पैट्रियाट्स की तैयारी पर काम कर रहे हैं। ٹرمپ نے غزہ میں ثالثی کی کوششوں پر امریکی نمائندہ اسٹیو وٹکاف

बच्चों को अपनी आंखों से देखने के बाद जब हेनरी डुनान ने रेड क्रॉस की बुनियाद रखी तो सल्तनत उस्मानिया के अहले फिक्र भी खामोश नहीं बैठे। डॉक्टर अब्दुल्ला बे, क्रीमिया के अजीज बे, सरदार अक्रम उमर पाशा और डॉक्टर मार्को पाशा जैसे नज़रियाती और मुखलिस अफराद जानते थे कि जंग सिर्फ मारने का नहीं बल्कि ज़िंदगी बचाने का भी इम्तिहान है। तहम हिलाल अहमर महज एक सरकारी इदारा नहीं था, ये उस्मानी माशरे की वक्फ और खैरात की रूह का जदीद दुनिया से हम आहंग रूप था। ये उस्मानी दौर की खैरात और वक्फ की रिवायत के जदीद अहद में इदारा जाती तसलसल के तौर पर सामने आया और इसके सरगर्मियों का एक बड़ा हिस्सा अवाम के अतियात और रजाकाराना तआवुन के जरिए जारी रहा। ख्वातीन का अपने घरों में पट्टियों का कपड़ा तैयार करना, हिलाल अहमर चाय के इज्तमाआत और बैजों की फरोख से हासिल होने वाली आमदनी इस अजीम इदारे के लिए हयात बख्श पानी साबित हुई। बास वक्तनामों में दर्ज तफसीलात के मुताबिक कुर्बानी की खालों से हासिल होने वाली आमदनी भी बराह रास्त ऐसे सिपाहियों के लिए मुख्तस की जाती थी जो जख्मी होने के बाद महाज से पीछे आ जाते थे। हिलाल अहमर महल और हवेलियों से लेकर कच्ची आबादियों तक माशरे के हर फर्द के लिए बिला मुआवजा भलाई के एक गैर तहरीरी मुआहदे की अलामत बन गया था। ये अंजुमन जंग चनाकले यानी गेलीबोलू और बलकान के जंगों के दौरान अपने कठिन तरीन और फैसला कुन तरीन इम्तिहानों में से गुजरे। चनाकले में मैदान जंग से महज चंद 100 मीटर के फासले पर कायम किए गए आरसी फौजी अस्पतालों में हिलाल अहमर के डॉक्टरों और नर्सों ने सिर्फ तुर्क सिपाहियों ही की नहीं बल्कि जंगी कैदी बनने वाले ऑस्ट्रेलवी और न्यूजीलैंड के फौजियों और बरतानवी फौजियों की भी इसी शफकत के साथ खिदमत की। एक रिवायत के मुताबिक हिलाल अहमर के एक डॉक्टर को ऐन उस वक्त अपने बेटे की शहादत की खबर मिली जब वो एक मरीज के ऑपरेशन में मसरूफ था, लेकिन इसने हाथ में पकड़ा हुआ नश्तर नहीं छोड़ा और एक दूसरे जख्मी की जान बचाने की कोशिश जारी रखी, क्योंकि इनके लिए इंसान हर किस्म की सियासत और जंग से बालातर था। यहाँ हिलाल अहमर खवातीन मरकज का भी खसूसी जिक्र जरूरी है। सफिया हुसैन आलबी जैसी पेशरो नर्सों ने बलकान के कीचड़ भरे रास्तों और हैजे की वबाओं के दौरान सिर्फ एक नारा बुलंद किया, वतन सलामत रहे, और नारे के साथ अपनी जानों तक की परवाह किए बगैर खिदमत अंजाम देती रहीं। जब वो आंसू बहाती आंखों के साथ शहीदों और गाजियों की खून आलूद पट्टियां धो रही थीं तो दरअसल एक पूरी कौम के मुस्तकबिल को भी पाक और रोशन कर रही थीं। बेसिम उमर पाशा की कोशिशों के नतीजे में ये अंजुमन महज एक इमदादी इदारा नहीं रही बल्कि बैनुल अक्वामी कानून में सल्तनत उस्मानिया की इंसान दोस्ती का दस्तखत बन गई। सरहदों से मावरा एक रहमत का पुल, मशरक बईद से अमरीका तक फैला हुआ दस्त शफकत। हिलाल अहमर का दुनिया तक पहुंचने वाला हाथ सिर्फ करीबी इलाकों तक महदूद नहीं रहा बल्कि समुद्रों के पार भी पहुंच गया। इसकी एक नहायत नुमाया मिसाल इन इमदादी सरगर्मियों में मिलती है जो 19वीं सदी के इख्तिताम पर रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका में आने वाली बड़ी कुदरती आफात और दाखिली इंतशार के दौरान सल्तनत उस्मानिया ने हिलाल अहमर के तआवुन से अंजाम दी। एक ऐसी सल्तनत का जो खुद अपने जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश कर रही थी, हजारों किलोमीटर दूर पेश आने वाली इंसानी अलमियत से बेखबर न रहना इस बात का सबूत था कि वक्फ और खिदमत खल्क की रूह आलमगीर है। इसी दौर में जापान में जलजले से मुतासरा अफराद के लिए भी इमदाद भेजी गई। ये इमदाद खामोश मगर इंतहाई ताकतवर दस्तावेजात हैं। दुनिया के लिए इस ऐलान की दस्तावेजात के रहम व शफकत की ना कोई जुबान होती है, ना मजहब और ना ही जुग्राफिया। जंग के बीच इंसानियत का नखलिस्तान। सामिन 1912-1913 की बालकान जंगों और इसके फौरन बाद शुरू होने वाली जंग अजीम के दौरान हिलाल अहमर ने न सिर्फ अपने फौजियों बल्कि गिरफ्तार किए जाने वाले दुश्मन फौजियों के साथ भी जो सलूक रवा रखा, इसे तिब और कानून की तारीख में एक अहम मोड़ के तौर पर दर्ज किया गया। रेड क्रॉस बैनुल अक्वामी कमेटी के रिकॉर्ड के मुताबिक हिलाल अहमर ने जंगी कैदी कैंपों में मौजूद गैर मुल्की फौजियों को इनके अहले खाना से राबता रखने में मदद दी, इन तक तिब्बी इमदाद पहुंचाई और इनके मजहबी अकायद का एहतराम यकीनी बनाने के लिए एक खसूसी निगरानी का निज़ाम कायम किया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि हिलाल सिर्फ इमदाद की ही नहीं बल्कि जंग के मैदानों में भी पामाल न किए जाने वाले इंसानी वकार की अलामत भी था। तबादले और हिजरत का खामोश गवाह। जमहूरिया तुर्की के इब्तदाई बरसों में तारीख के एक बड़े बोझ यानी आबादी के तबादले के दौर में
قزلائی نے جو کردار ادا کیا اسے الفاظ میں بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یونان سے اناتولیہ اور اناتولیہ سے یونان منتقل ہونے والے لاکھوں افراد کی خوراک، صحت اور منتقلی کے انتظامات میں اس نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ بندرگاہوں پر قائم کیے گئے لنگر خانے، عارضی اسپتال اور بچوں کی نگہداشت کے مراکز ان لوگوں کے لیے سہارا بن گئے جو اپنے وطن اور گھروں سے جدا ہو چکے تھے۔ ماضی کی وہی قربانی اور ایثار کی روح آج ایک ایسی عظیم تنظیم کی ناقابل شکست بنیاد بن چکی ہے جس کا ہاتھ غزہ سے لے کر افریقہ کے انتہائی خشک دیہات تک اور یوکرین سے لے کر مشرق بعید کے آفت زدہ علاقوں تک پہنچتا ہے۔ سمین ہلال احمر صرف جنگ کے میدانوں تک محدود نہیں تھا۔ 1923 میں جمہوریہ ترکیہ کے قیام کے بعد بھی یہ ادارہ ہلال احمر کے نام سے ہی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھا۔ پھر 1935 میں اس نے غازی مصطفیٰ کمال اتاترک کے منتخب کردہ نام قزلائی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ جنگ آزادی کے دوران گولہ بارود لے جانے والی بیل گاڑیوں کے ساتھ آبادی کے تبادلے کے برسوں میں بندرگاہوں پر جمع ہونے والے مہاجرین کے دسترخانوں پر اور زلزلوں کے دوران ملبے کے ڈھیروں کے درمیان قزلائی ہر جگہ موجود تھا۔ آج اگر قزلائی دنیا کے 190 سے زائد ممالک میں نیکی کا پرچم بردار جہاز ہے تو اس کامیابی کے پیچھے ان لوگوں کی میراث ہے جنہوں نے 150 سال پہلے اس سفید پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ وہ سرخ ہلال ایک تہذیب کے اس اصول کی ٹھوس ترین علامت ہے کہ انسان کو زندہ رکھو تاکہ ریاست زندہ رہے۔ جب تک وہ ہلال چمکتا رہے گا، بے سہاروں کا سہارا اور بے قصوں کا چارہ بننے والا طاقتور ہاتھ انسانیت سے کبھی دور نہیں ہوگا۔ ہم ہلال احمر کی شفقت میں پروان چڑھنے والے اور اس عظیم وقف کی روایت کے وارث ہیں۔ سامعین، آج ہم محاذ کے پیچھے موجود اس خاموش بہادری اور ہلال احمر کے مقدس تاریخی سفر سے گزرے ہیں۔ وقف پر مبنی تہذیب صرف انسانی جسم کے زخموں پر مرہم نہیں رکھتی بلکہ اس کی روح کے انتہائی لطیف درد کو بھی چھوتی ہے۔ دل کے ساتھ رابطے استوار رکھیے اور رحمت اور نیکی کے ساتھ رہیے۔ یاد رکھیے، جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور ایک کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔دینے والے ہاتھ کی کہانی۔